रात्रि की 5 बजकर प्रातः के 5:33 और 17 सेकेंड हो चुके हैं साथियों। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। और अब जीवन का संदेश देता ये गीत सुनते हैं।

किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था लड़का लड़की। 1966 रिलीज ये फिल्म रही थी। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। और अब जिस बात की आशा थी, इंतजार था, वो पल आ गए, वो आ गए हैं।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी रचना आवारा फिल्म से साथियों अभी आपने सुनी। 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों एक समय था जब पहेलियां बहुत प्रचलन में थी। पहेली विधा से मस्तिष्क की कसरत होती है और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि अब भी पहेलियां प्रचलन में है लेकिन बहुत कम। फिल्म जगत में पहेली आधारित गीत भी सजे हैं, उन्हीं में से एक गीत रचना ये भी।

आशा भोसले और साथियों की आवाजों से सजी रचना मेरा नाम जोकर फिल्म से आप सुन रहे हैं। 1970 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजी ये रचना नवरात्रि फिल्म से आपने सुनी। 1955 रिलीज ये फिल्म चित्रगुप्त का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सच रही है ये रचना। भोर हुई, पंछी जागे, इंसान जागे, बढ़े अपने अपने कार्यों की ओर, और इन्हीं में से एक ये भी।

0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय

0: नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जल डमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरिज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Ponthamalli Vaddapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for the young people.
2: Aaj component se technology aur finished products ka har rajya mein kendra sarkar product chain ko majboot kar rahi hai aur inhi koshishon ka parinam hai aaj hum duniya ke second largest mobile manufacturer hai. 2014 se ab tak hamare electronics export 11 times bade hain, hamare defense export 50 टाइम्स बड़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: The Supreme Court directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties. Issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against the authorities over alleged violations of its directions, the Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. Delhi government is set to launch the Durga Driving Upliftment and Rozgar for Women and Transgender e-auto scheme to promote safe and sustainable self-employment for women and transgender persons. The government has informed that the scheme will facilitate the allocation of 1300 pink electric autos in its first phase, of which 1178

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर. अब हम अपने अगले सेगमेंट में जा रहे हैं और जहां पे मैंने आपको बताया था कि आज हम एक स्पेशल एपिसोड सुनने वाले हैं सजग भारत. सजग भारत के अंतर्गत हम सुनेंगे आज नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसे लिपिबद्ध किया है मैंने, यानी कि प्रीति जमा ने, और प्रस्तुतिकरण है श्रीकांत ओझा और जागृति धर दुबे का. स्टे ट्यून्ड.
2: ये है आकाशवाणी हैदराबाद.
3: अब आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सजग भारत.
2: आज सजग भारत के अंतर्गत हम सुनेंगे
3: नई शिक्षा नीति. बचपन सवालों से भरा होता है. हर नई चीज को जानने की उत्सुकता, हर दिन कुछ नया सिखाने की चाह, यही तो शिक्षा की असली पहचान है. लेकिन क्या शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित है, या फिर शिक्षा वह है जो बच्चों की कल्पनाओं को पंख दे, उनकी प्रतिभा को पहचान दे और उन्हें जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना सिखाए. इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशने और शिक्षा को नई सोच, नई दिशा देने के उद्देश्य से आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.
4: पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए.
3: सदियों पहले कबीर दास जी ने भी शिक्षा का मर्म समझा दिया था. ज्ञान सिर्फ पुस्तकों के पन्नों में नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला में बसता है.
4: इसके अलावा विद्या ददाति विनयम, विनयाद या पात्रताम, पात्रत्वाम धनमाप्य नोति, धनात धर्मम तथा सुखम. भारतीय ज्ञान परंपरा का यह श्लोक भी यही बताता है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता, योग्यता और जीवन के सुख का आधार है. बदलते भारत में इसी विचार को नए युग की आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति. साथियों, हर दौर की अपनी चुनौतियाँ होती है और हर चुनौती बदलाव की मांग करती है. समय ने करवट ली, दुनिया बदली, सीखने के तरीके बदले, नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो चुका है और इसी बदलाव ने भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया और फिर यह महसूस किया गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी समय के साथ कदम मिलाए और परिणाम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.
3: लगभग 34 वर्षों बाद देश की शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव किए गए. इसका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम बदलना नहीं, बल्कि शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक, कौशल आधारित और भविष्य के अनुरूप बनाना था, ताकि हर विद्यार्थी 21वीं सदी की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके. नई शिक्षा नीति का मूल विचार क्या पढ़ना है से अधिक कैसे सीखना है पर जोर देता है, ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सके और केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास भी अर्जित कर सके.
4: एक समय था जब यदि कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा किसी अन्य विषय में रुचि दिखाता, माता पिता उसे प्रेरित करने की हतोत्साहित करते कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे नंबर लाकर दिखाओ. परंतु आज इस नवीन शिक्षा नीति ने उन्हीं अभिभावकों को भी नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है. दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जो भारत के सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन जो भारत के सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हो लेकिन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह सक्षम हो. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जो प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारे, सीखने को रटने तक सीमित ना रखे, बल्कि जिज्ञासा, रचनात्मकता, तार्किक सोच और नवाचार को बढ़ावा दे.
3: एक और जहां नई शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा को सुलभ, समावेशी, समान, गुणवत्ता पूर्ण और रोजगारों उन्मुख बनाना है, वहीं दूसरी भारतीय ज्ञान परंपरा संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आत्मनिर्भर, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है. बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य मात्र पढ़े लिखे युवा तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे जागरूक, कुशल, संवेदनशील और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है जो बदलते भारत और बदलती दुनिया का नेतृत्व संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ कर सके। अब आप विचार कर रहे होंगे कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा क्या नया है जो इसे पहले की नीतियों से अलग बनाता है। तो आइए आपकी जानकारी के लिए कुछ प्रमुख विशेषताओं की ओर रुख करते हैं।
4: नई स्कूली संरचना। नई शिक्षा नीति में 10+2 व्यवस्था की जगह 5+3+3+4 का ढांचा अपनाया गया है ताकि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास की विभिन्न चरणों के अनुसार शिक्षा दी जा सके। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को भी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है।
3: मातृभाषा में शिक्षा। कम से कम 5वीं कक्षा तक और जहाँ संभव हो 8वीं तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर विशेष बल दिया गया है ताकि बच्चे अपनी भाषा में बेहतर ढंग से सीखें और समझ सकें।
4: रटने से नहीं, समझने से सीखना। नई नीति का जोर केवल परीक्षा और अंकों पर नहीं बल्कि अवधारणात्मक समझ अर्थात कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रचनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने पर है।
3: विषय चुनने की स्वतंत्रता। अब केवल विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसे पारंपरिक विषयों पर ही केंद्रित ना होकर अन्य विषयों पर भी बल दिया गया है। विद्यार्थी अपनी रुचि और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकते हैं।
4: कौशल और व्यवसायिक शिक्षा। 6वीं कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप और कौशल विकास को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम हो।
3: तकनीक का समावेश। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर शिक्षा को अधिक आधुनिक और सुलभ बनाने का प्रयास किया गया है।
4: समग्र मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता और व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन करना है ताकि उसका बहुआयामी विकास हो। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है जहां पर बच्चों को अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे विकसित करने और जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार होने का अवसर मिले।
3: विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया आपसे साझा करना चाहते हैं साथियों। हर नई पहल के साथ उम्मीदें भी जुड़ी होती है और सवाल भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर भी विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया उत्साह और जिज्ञासा दोनों से भरी रही है। अधिकांश विद्यार्थियों का मानना है कि अब उन्हें अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। रटने की बजाय समझने, प्रयोग करने और कौशल विकसित करने पर भी जोर दिए जाने से भी भविष्य के लिए खुद को अधिक तैयार महसूस करते हैं।
4: वहीं अभिभावक भी इस बात से संतुष्ट दिखाई देते हैं कि नई नीति बच्चों के समग्र विकास पर बल देती है। उनका मानना है कि केवल अंकों की दौड़ से हटकर यदि बच्चों की प्रतिभा, रचनात्मकता और व्यक्तित्व को विकास किया जाए तो वे जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। हालांकि कुछ अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने मातृभाषा में शिक्षा, नई मूल्यांकन प्रणाली और नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कुछ प्रश्न और चिंताएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे देश के हर स्कूल और हर बच्चे तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक ऐसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है जो शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: किसी भी नीति की वास्तविक सफलता उसके दस्तावेजों में नहीं बल्कि जमीनी बदलाव में दिखाई देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी धीरे धीरे ऐसे ही बदलावों की तस्वीर पेश कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के 5 वर्षों में कई ऐसे संकेत सामने आए हैं जो शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार विद्या प्रवेश और निपुण भारत मिशन के माध्यम से 4,20,00,000 से अधिक बच्चों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। वहीं लगभग 8,90,000 विद्यालयों में पारंपरिक सकारात्मक और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। CBSE ने भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप बोर्ड परीक्षाओं में 50% तक दक्षता आधारित यानी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न शामिल किए हैं, ताकि विद्यार्थियों को केवल याददाश्त नहीं बल्कि समझ, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता का आकलन हो सके।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव का आकलन करने की दिशा में वर्ष 2025 में जारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। देश के 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिलों के 74,229 विद्यालयों और 21,15,022 विद्यार्थियों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया। यह देश का सबसे बड़ा अधिगम मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जो विद्यार्थियों के रटने की क्षमता नहीं बल्कि उनकी समझ, अनुप्रयोग और दक्षता का आकलन करता है। यह स्वयं इस बात का संकेत है कि अब शिक्षा का मूल्यांकन केवल परीक्षा परिणामों से नहीं बल्कि वास्तविक सीखने के स्तर से किया जा रहा है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब केवल एक दस्तावेज नहीं रही बल्कि धीरे धीरे कक्षाओं, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव में बदलाव का आधार बन रही है।
3: देश के कई राज्यों और विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षण, कौशल विकास, बैगलेस डे, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल शिक्षण जैसे प्रयासों ने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया है। अब विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि प्रयोग, परियोजनाएं और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से भी सीख रहे हैं। कई विद्यालयों में स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद और इंटर्नशिप जैसे पहल ने बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ना शुरू किया है। इससे उनमें आत्मविश्वास, जिज्ञासा, समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। यही छोटे छोटे परिवर्तन इस बात का संकेत है कि नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं बल्कि शिक्षा की सोच में बदलाव का प्रयास है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 नवंबर 2020 को प्रसारित मन की बात के 18वें एपिसोड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार है। उन्होंने श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन का स्मरण करते हुए नई शिक्षा नीति को भारत के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी अब धीरे धीरे कागज से निकलकर कक्षाओं तक पहुंच चुकी है और इसके सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगे हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडाइस प्लस 2025-26 के अनुसार बच्चों के एक शैक्षिक चरण से अगले चरण तक पहुंचने के दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।
3: उच्च शिक्षा नीति के क्षेत्र में भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जून 2025 तक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 70,000 से अधिक हो चुकी है। साथ ही बहुविषयक शिक्षा, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट जैसी व्यवस्थाएं चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता केवल नीति बनाने से नहीं बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी निर्भर करेगी। देश के अनेक राज्यों और संस्थानों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की गति बढ़ाने की आवश्यकता है।
4: हर बड़ा परिवर्तन अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है तो कुछ चुनौतियां भी सामने रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसका अपवाद नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की। देश के हर राज्य, हर स्कूल और हर विद्यार्थी इसके लाभ समान रूप से पहुंचे, इसके लिए पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और मजबूत आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज भी अनेक ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है।
3: मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था भी नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, किंतु भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री तैयार करना और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आसान कार्य नहीं है। इसी प्रकार कौशल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण और विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है।
4: विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चुनौतियों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी भारत की शिक्षा व्यवस्था में दूरगामी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। नीतियाँ बदलाव का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते को मंजिल तक पहुँचाते हैं शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और समाज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वास्तविक सफलता भी इसी साझी भागीदारी में निहित है।
3: हम ये विश्वास करते हैं कि शिक्षा की नई यात्रा हर बच्चे के सपने को नई दिशा देगी, क्योंकि जब शिक्षा बदलती है तो केवल पाठ्यक्रम नहीं बदलते, पीढ़ियां बदलती है और उन्हीं पीढ़ियों के साथ बदलता है राष्ट्र। यही विश्वास है, यही संकल्प है और यही बदलाव लाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
4: बदलेगी सोच, बदलेंगे सपने, ज्ञान से रोशन होंगे भाग्य अपने।
3: हर बच्चे को मिलेगी नई उड़ान, हर प्रतिभा को मिलेगी नई पहचान।
4: शिक्षा बन जाएगी जीवन की रीति,
3: ऐसा बदलाव लाएगी नई शिक्षा नीति।
5: अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सजग भारत।
2: ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र के अंतर्गत प्रसारित किया गया।

0: శనివారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है. ये माता का दूसरा स्वरूप है और उन्हें जो है तपस्या, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ सदाचार की देवी भी माना जाता है. तो जय माँ ब्रह्मचारिणी. और ब्रह्मचारिणी का अर्थ यदि आप जानना चाहते हैं तो तप का आचरण करने वाली देवी ही ब्रह्मचारिणी है. और इसके पीछे एक कथा भी है जो शायद अभी संभव ना हो आपके साथ साझा कर सकें. पर हाँ, आज जो है ये नवरात्रों में यूजुअली जो है गरबा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है. और गरबा किस लिए खेला जाता है तो गर्भ से जिसकी जो संस्कृत जो शब्द है गरबा वो एक संस्कृत के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति मानी गई है. और एक मिट्टी का मटका और एक दीप यानी कि पारंपरिक रूप से गरबे के दौरान बीच में एक छिद्र युक्त यानी कि एक छोटा सा छेद जिसमें होता है मिट्टी का मटका रखा जाता है जिसे गर्भ ही कहते हैं. इसके अंदर एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है और जलता हुआ दीपक शरीर रूपी मटके में विराजमान दिव्य आत्मा और माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है. ऐसे कई सारे इसके महत्व हैं लेकिन लेकिन लेकिन पुनः कभी यदि अवसर मिला तो हम आपके साथ साझा करेंगे. पर फिलहाल जब बात गर्भे की चल ही रही है, आप भी कई ऐसे लोग हैं जो शाम की तैयारी अभी सवेरे से ही शुरू कर देते हैं, तो चलिए उसी तैयारी में एक छोटा सा जो है प्रयास हम भी करें

0: इस प्रेम के मौसम में हम रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे साथियों, पर कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचाए बिना नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो आवश्यक है। स्टे ट्यून्ड।
1: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Irani chai,
2: bun maska,
1: Hyderabadi biryani,
2: tongue di kebab,
1: kurbani ka meeta,
2: shehdood malai.
1: Hyderabad is a grand buffet,
2: and every dish has a story waiting to be told.
1: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
2: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashne Hyderabad.
3: FM Rainbow 101.9.
4: और दोस्तों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब समय हो चला है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। एक बार ना ज्ञानचंद जी, श्रीमती ज्ञानचंद जी ना काफी डल थी, तो ज्ञानचंद जी ने पूछा कि भाई आप इतनी डल क्यों हैं श्रीमती जी, जाइए डॉक्टर को बताइए। तो श्रीमती जी ने कहा कि डॉक्टर को बता आई मैं, और डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने जो है श्रीमान जी से कहिए कि वो आपको कहीं घूमने ले चले। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने तुरंत कहा हाँ ठीक है चलो। तो इस पर श्रीमती जी ने पूछा कि कहाँ, तो ज्ञानचंद जी ने कहा कि दूसरे डॉक्टर के पास। भाई भाई साथियों, इसके बाद में क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं, है ना। पर श्रीमती ज्ञानचंद जी को भले ही ज्ञानचंद जी कहीं घूमाने लेके ना जाए, पर हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। आप तैयार हैं? अरे नहीं भाई, हंसने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सही में घुमाने लेके जाना चाहती हूँ। अगर तैयार है तो यस यस, इसमें आपको लेके जाना चाहती हूँ भारत के सबसे जो है कम जनसंख्या वाले और बेहद खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में आपको घुमाने ले जाना चाहती हूँ। और आपकी जानकारी के बता दूं कि ये पूर्वी हिमालय की गोद में बसा है, इसके पश्चिम में नेपाल है, उत्तर और पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व में भूटान है, जबकि दक्षिण में पश्चिम बंगाल स्थित है। अब यहाँ पर घूमने यदि आप जाना चाहते हैं तो आप अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह मुझे आपको यहाँ पर घुमानी है। और सोंगो चांगू लेक, जिसे हम कहते हैं, नाथुला दर्रा भी है, यमथांग घाटी भी है, लाचुंग गांव है, और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स हैं, रोमटेक मोनास्ट्री है। भाई भाई सबके बारे में बताऊंगी, इतनी गड़बड़ क्या है, आराम से जाएंगे ना। हाँ हाँ, माउंट कटाओ भी है, चोपता घाटी है, यस यस यस यस, खेचियो पलरी लेक है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये बाबा मंदिर है, इतनी सारी जगह कैसे जाएंगे। भाई मैं हूं ना, बस आप जो है एक लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, हम चलेंगे और फिर इसके बारे में आपके साथ जैसे जैसे चलेंगे वैसे आपको जानकारी भी देंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Hello listeners, are you someone who loves getting lost in the pages of a good book and wishes others could experience the same joy that you found between those pages? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
0: FM Rainbow 101.9.
2: नमस्कार, तपाईलाई कस्तो छ? Yes, कुछ समझ में आया? नहीं आया ना भाई, नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है नेपाली भाषा में मैंने आपसे पूछा कि नमस्कार आप कैसे हैं, यानी कि नमस्कार तपाईलाई कस्तो छ। इस ये नेपाली भाषा जो है वो सिक्किम राज्य में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा वहां पर अंग्रेजी और सिक्किमी लेपचा ये सारी जो प्रांतीय भाषाएं होते हैं वो भी चलती हैं। और जब हम घूमने की बात कर ही रहे थे तो भाई इसको भी हम यदि हम नेपाली में आपसे कहें तो घूमनु जानहुन्छ ऐसे हम पूछेंगे, घूमने चलोगे? यदि हम पूछना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि घूमनु जानहुन्छ। तो चलिए, जब आप घूमने के लिए तैयार हो ही गए हैं सिक्किम, तो गैंगटोंग से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है चांगू लेक। जी हाँ, ग्लेशियरों के पिघलने से इस यह लेक जो बनती है, जो कि सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लेक से होते हुए नाथुला दर्रा जा सकते हैं और यहाँ जो प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे ना भाई, वह साथियों किसी जन्नत से कम नहीं है। जब बात जन्नत की चल ही रही है तो मैं आपको बस जन्नत जैसा ही लगने वाला है गीत भी सुनाना चाहती हूँ, पर उसके पहले आपको ये बता दूं कि पास की पहाड़ियों से लेक का पूरा व्यू देखकर आप बहुत बहुत ज़्यादा आनंदित हो सकते हैं, यदि आप आनंदित होना ही चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि जन्नत की फीलिंग आती है, बिल्कुल बिल्कुल जन्नत की फीलिंग। और नाथुला दर्रा के बारे में आपको क्या ही कहूँ, ये एक सैन्य व्यापारिक ठिकाना भी है और चीन भारत के व्यापार से जुड़ा ये चौकी जो है वो तिब्बत के एकदम करीब में पड़ती है। और यदि आप चांगू लेक जाते हैं तो वहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ही नाथुला दर्रा है। और इस नाथुला दर्रा, इसे ही सिल्क रूट भी कहा जाता है, जहां सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही जाने दिया जाता है। जी हां साथियों, उसके बाद में हम यमथंग घाटी की ओर भी बढ़ सकते हैं। ये बहती नदी और फूलों

भरी घाटी है किसी सपने की दुनिया से कम नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये फूलों की घाटी नाम से भी प्रचलित है, मशहूर है, प्रसिद्ध है, और बस इसे भी अगर आप देखो तो जन्नत वाली ही फीलिंग आनी है। जब बात बार बार बार बार जन्नत की ही चल रही है, तो भाई क्यों ना बैठे बैठाए जन्नत ही देखा जाए। कैसे अजी ऐसे।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: FM Rainbow 101.9 आप सुन रहे हैं यस एक भारत श्रेष्ठ भारत. और एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमने जैसे आपको बताया कि आज हम सिक्किम के बारे में आपके साथ सिक्किम हम आपको घूमने ले जा रहे हैं. तो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, भाई आप सिक्किम जाओ और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स ना देखो तो भाई कुछ भी नहीं देखा. जी हाँ, झरने वाले राज्य सिक्किम के गैंगटॉक लाचुंग हाईवे पर पर्यटकों के लिए बेहतरीन ही बेहतरीन गिफ्ट माना जाता है. टूरिस्टों के बीच ये काफी पॉपुलर जगह है और जहाँ खास झरना बहता है. बताया जाता है कि झरना 7 चरणों में पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है और इसीलिए इसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है. और इसके बारे में बताया यह भी जाता है कि कहानी है कि किसी राजा की 7 बेटियां थी जिन्हें प्रकृति से अथाह प्रेम था. वे 7 राजकुमारियां इस झरने के रूप में प्रकृति में विलीन हो गई और इसीलिए ये सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानी जाती हैं. और गैंगटॉक से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर ये टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर पहुंचने के लिए शायद लगभग आपको 40 मिनट का समय लगता है. माउंट कटाओ, जी हाँ, साहसिक यात्रा यदि आप पसंद करते हैं तो माउंट कटाओ आप ही के लिए बेहद रोमांचित करने वाला स्थान है. साथियों, गैंगटॉक से 144 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये स्थित है. ये वादियों की खूबसूरती से लैस है और लेकिन कम ही लोगों को इसके बारे में जानकारी है. इसकी चोटी तक आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं बल्कि इसके लिए सेना से इजाजत भी लेनी पड़ती है आपको. यहाँ बर्फबारी का आनंद लेना है तो दिसंबर से फरवरी और मार्च से जून के बीच जाना श्रेयस्कर रहेगा ऐसे बताया जाता है. और फिर आती है चोपता घाटी. कैंपिंग और ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो भाई चोपता घाटी आप ही के लिए बनी है. फिर और भी आगे जा सकते हैं पर स्टूडियोज की घड़ी हमें यहाँ से ज्यादा आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है. तो चलिए फिलहाल हम इन्हीं वादियों में छैया छैया करते हैं.

0: FM Rainbow 101.9
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
2: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।
3: साथियों, सूर्य की घड़ी में 11:59:17 हो चले हैं और बहुत जल्द ठीक 12 बजे हम आपको ले चलेंगे समाचारों की ओर, जो हिंदी में समाचार होंगे, और उसके बाद में 12:05 को न्यूज इन इंग्लिश की ओर, और पुनः आपके साथ हम जुड़ेंगे 12:10 पर आपके फेवरेट प्रोग्राम यादों की बारात के साथ। और आज यादों की बारात किसके द्वार जाएगी ये मैं आपको बताऊंगी, पर अभी नहीं। यस दोस्तों, थोड़ी सी जो है इंतजार की दरखास्त है आपसे, और चलिए हम बढ़ते हैं समाचारों की और स्टे ट्यून्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है। वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून

0: उनके अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरुनानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Mangrol, the third anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard Limited, CSL Kochi, was commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard, Mumbai, this morning. Named after Mangrol, a coastal town and prominent fishing harbour in Gujarat's Junagadh district, the ship carries forward the legacy of the erstwhile INS Mangrol M85, a minesweeper that served the Indian Navy until the 7th of April 2004. The naming of the ship continues the Navy's tradition of preserving the legacy of its former warships. Built with over 80% indigenous content, Mangrol reflects India's growing capabilities in warship design, construction and integration of advanced weapons and sensors. Constructed by CSL under the government's Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives, the ship marks another important step towards self-reliance in defence shipbuilding. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant whatever relief is due under the law. Addressing the 33rd Foundation Day of the NHRC in New Delhi, Justice Suryakant said, the Constitution has made expansive promises to every citizen, including of dignity, equality, liberty and justice.
0: Our Constitution has made expansive promises to every citizen, including of dignity, equality, liberty and justice. If the Constitution is the promise, the Commission is one of its keepers. It listens to those who cannot easily speak, and it can act on its own without waiting to be asked.
2: Responding to the India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night, explaining why he was unable to meet them. The coal stocks at domestic coal-based power plants have remained stable above 18 million tonnes since the 29th of last month. The Ministry of Coal informed that coal stocks stood at 18.205 million tonnes on the 10th of this month. The Ministry said the stabilisation reflects coal supplies keeping pace with daily consumption at power plants, and the supply to the plants with critical stocks is being closely monitored. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that the entry and exit at six metro stations will remain closed till 4 p.m. today in New Delhi due to security reasons. These stations are Patel Chowk, Janpath, Rajiv Chowk, Mandi House, Central Secretariat and Barakamba Road. DMRC said interchange facility will remain available at all the concerned metro stations. The Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. In its advisory, the Traffic Police said traffic movement is likely to be affected at various stretches including Minto Road, Mandi House Roundabout, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road Flyover and others. Saudi Arabia's King Khalid International Airport in Riyadh was targeted by another attack on Sunday, with the General Authority of Civil Aviation reporting that injuries and damage assessments were underway. The latest incident comes just a day after an attack on the airport, one of the deadliest in Saudi Arabia in almost a decade. Indian Embassy in Riyadh has informed that an Indian national who was among 11 Indians injured in the attack has died. External Affairs Minister S. Jaishankar expressed grief over the death, offering condolences to the bereaved family. Meanwhile, Yemen's Houthi group claimed it had carried out four missile and drone operations against Saudi targets in response to what it described as Saudi aggression against Yemen. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% down in the forenoon session today. The Sensex shed 561 points to 71,911, while the Nifty dropped 149 points to 22,372 when reports last came in. On the sectoral front, PSU banks, telecommunication and FMCG were dragging the most. Conversely, media, housing finance and capital goods were leading the gains. And with that, we end this news bulletin.

0: FM Rainbow 101.9।
1: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से, जहां आज मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजी प्रीति आपके साथ जुड़ी हुई। और अब स्टूडियोस की घड़ी में जो समय हो चला है 12:10 का, तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से सफर यादों की बारात की ओर। यस, यादों की बारात की ओर आगे बढ़ने से पहले ज्ञानचंद जी का ज्ञान, तो इस पर ना मैंने सरासरी जो है ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने ज्ञानचंद जी से पूछा कि और ज्ञानचंद जी शाम का क्या प्लान है, अभी तो गरबा वरबा सब चल रहा है, डांडिया नाइट कहाँ पे है। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि शाम को फिर बैठेंगे हम तीन यार। तो मतलब मैंने पूछा कि अरे वाह क्या बात है, तो उन्होंने कहा मैं बर्तन और बर्तन की बार। तो अब ज्ञानचंद जी का यही कहना है कि जी हाँ, शादी करके फंस गया यार।

0: రెయిన్బో 101.9.
1: ఇరానీ చాయ్,
2: బన్ మస్కా,
1: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
2: టంగ్ ది కబాబ్,
1: కుర్బానీ కా మీఠా,
2: షహదూద్ మలై.
1: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే
2: అండ్ ఎవ్రీ డిష్ హ్యాస్ అ స్టోరీ వెయిటింగ్ టు బి టోల్డ్.
1: ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై జష్నే హైదరాబాద్ ఇస్ యువర్ ఆఫ్టర్నూన్ ట్రీట్
2: ఫ్రమ్ 2 to 3 PM ఎవ్రీ డే ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
1: ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్,
2: ఇట్స్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ ఫ్లేవర్ రోల్డ్ ఇన్ టు వన్.
1: జష్నే హైదరాబాద్.
3: आप सुन रहे हैं यादों की बारात, आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ. और आज यादों की बारात हम ले चलेंगे प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली. जी हाँ, माफी चाहूंगी, निदा फाजली के द्वार, क्योंकि आज उनका जो है जन्मदिन है. जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू निदा फाजली जी. 12 अक्टूबर सन 1938 यानी कि 1938 को उनका जन्म हुआ था. उनका मूल नाम मुक्तदा हसन निदा फाजली था. जी हाँ साथियों, वास्तविक नाम मुक्तदा हसन था. वे अपने माता पिता के तीसरे संतान थे. उनके पिता मुर्तजा हसन जो हैं स्वयं एक शायर थे, जबकि उनकी माता जो जमील फातिमा, जबकि उनकी माता जी थी वो जमील फातिमा, वो गृहिणी थी. साहित्यिक वातावरण उन्हें विरासत में मिला था, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने उनकी सोच को और अधिक व्यापक बना दिया, ऐसे उल्लेख मिलते हैं साथियों. और भारत विभाजन के समय उनके माता पिता पाकिस्तान चले गए, लेकिन निदा फाजली ने भारत में ही रहने का निर्णय लिया था, और यह निर्णय उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को दर्शाता है. वे जीवन भर भारतीय संस्कृति की साझा विरासत के पक्षधर रहे, और उनकी शायरी में यही भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. इनके बारे में और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, पर फिलहाल उन्हीं द्वारा जो है लेखनबद्ध किया हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं.

और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात, आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ। और आज ये बारात हम ले चले हैं निदा फाजली जी के द्वार। जी हाँ, आज भले वो हमारे बीच नहीं है पर अपने गीतों की पहचान वो हमेशा हमारे बीच छोड़कर गए और उसी रूप में वो हमेशा सदैव हमारे साथ रहेंगे। निदा फाजली जी का बचपन जो है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर उस समय साहित्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था साथियों, जिसने उनके बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाई और स्कूली जीवन से ही उन्हें कविता, शायरी और लेखन में रुचि हो गई थी। है ना, माहौल काफी असर करता है। और उन्होंने ग्वालियर कॉलेज यानी कि विक्टोरिया कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी एवं उर्दू में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के साथ ही वे लगातार लिखते रहे और साहित्य के साथ गहराई से जुड़ते भी चले गए। और कॉलेज जीवन में घटित एक घटना जो विशेष रूप से जो है उनके दिल पर छाप छोड़ गई, वो है एक सहपाठी छात्रा की आकस्मिक मृत्यु। जी हाँ साथियों, उनके साथ पढ़ने वाली छात्रा की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया था और तब उन्हें महसूस हुआ कि केवल अलंकारिक और जटिल भाषा उनके दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रही है। और इसी खोज में उन्हें जो है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और बाबा फरीद जैसे कवियों के सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा की ओर मोड़ा और यहीं से उनकी रचनात्मक शैली ने स्थायी रूप लिया। और भी इनके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे पर फिलहाल इन्हीं द्वारा रचित एक प्यारे से गीत के बाद। जी हाँ साथियों,

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथियों आकाशवाणी कुर्सी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात. जी हाँ, यादों की बारात आपके धड़कनों पर जीते हैं आज प्रीति के साथ. और ये यादों की बारात आज हम ले चले हैं निदा फाजली जी के द्वार, जहाँ आज उनका जन्मदिन है. जी हाँ, उनकी आज जयंती है. और एक बात आपको भी मतलब कौतूहल बस जाननी होगी, जब उनका नाम मुख्तदा हसन था तो फिर निदा फाजली कैसे पड़ा. तो साथियों बताया जाता है कि निदा शब्द का अर्थ है आवाज या पुकार, जबकि फाजली जो है उनके पूर्वजों के कश्मीर के फाजिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. इसी नाम से उन्होंने साहित्य जगत में पहचान बनाई और इसीलिए वे निदा फाजली के नाम से ही विख्यात हुए. उनका लेखन नाम जो है उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था, जो कि समाज की चुप आवाज को शब्द देता था. और जहाँ तक उनके आगे की संघर्ष की बात करें तो रोजगार और रचनात्मक संभावनाओं की तलाश में वो जो है सन 1964 यानी कि 1964 में मुंबई चले आए थे. और उस समय मुंबई में ना हिंदी उर्दू साहित्य और फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. शुरुआत के दिनों में तो वैसे भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है. और उन्होंने जो है धर्मयुग, ब्लिट्ज, सारिका जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए पत्रकार और लेखन के रूप में काम किया. उनके सरल और ईमानदार के साथ साथ बेबाक लेखन शैली ने जल्द ही उन्हें पहचान दिलाई. एक फिल्म गीतकार के रूप में उनके योगदान क्या था ये हम जानेंगे उन्हीं द्वारा रचित इस प्यारे से गीत के बाद. स्टे ट्यून्ड.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथियों आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं यादों की बारात, आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ। और यादों की बारात आज चली है निदा फाजली जी के द्वारा। निदा फाजली जो है उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरल सीधी और आम बोलचाल की भाषा थी। वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि संवेदना का संप्रेषण है। उनकी शायरी में सूफी सोच और भारतीय दर्शन के साथ साथ मानवीय करुणा का भी सुंदर समन्वय मिलता है। वे गजल, नज्म, दोहा, गीत और संस्मरण हर विधा में समान रूप से सफल रहे। और जहां तक उनके फिल्मों में गीत लेखन की बात करूं तो तब जब उन्हें अवसर मिला तब वे प्रसिद्ध शायर जानिसार अख्तर के निधन के बाद फिल्म निर्माता कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म रजिया सुल्तान के लिए गीत लिखने को कहा और यहीं से उनका जो है फिल्मी सफर शुरू हुआ। जी हाँ, फिल्म रजिया सुल्तान से। और जहाँ तक जो है उनकी प्रसिद्ध गीत, उनके जो सदाबहार गीतों की यदि मैं बात करूँ तो तू इस तरह, जो अभी हमने सुना, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, या फिर होश वालों को खबर क्या, या फिर ये जो अभी मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूँ वो भी उन्हीं की कुछ विशिष्ट कृतियों में से एक है। जी हाँ साथियों, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता।

के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं साथियों। साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सन 1998 यानी कि 1998 में नवाजा गया, जो कि उनकी कृति खोया हुआ सब कुछ के लिए था। और भारत सरकार द्वारा सन 2013 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मीर तकी मीर पुरस्कार, खुसरो पुरस्कार और अनेक राज्यों में जो है उर्दू अकादमी सम्मान उन्हें मिला है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और उन्हीं द्वारा रचित इस प्यारे से एक और गीत की ओर चलते हैं, जो कि फिल्म रजिया सुल्तान से है और आज हमारे जो रेडियो शौकीन सरवर जी हैं उनकी फरमाइश भी है। तो चलिए उसी ओर बढ़ते हैं।

0: FM Rainbow 101.9
1: वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर दिल की गहराइयों से पुनः एक बार आपका स्वागत है, जहां आज हम पहुंच चुके हैं आपके प्यारे शो, जी हां, दिल ए रुबानी में। दिल ए रुबानी, जी हां, दिल ए रुबानी की बात क्या करूं साथियों। ये किस्मत से ना तो सिर्फ सांसें बख्शी हैं, जी हाँ, किस्मत ने तो ना सिर्फ सांसें बख्शी हैं, जिंदगी वो है जो दूसरों के काम आए, जी हाँ साथियों। और स्वागत करती हूँ मैं पुनः आप सभी का एक ऐसे सफ़र में जहाँ इंसानियत मुस्कुराती है और नेकी सर उठाकर चलती हैं, दिल ए रुबानी में। दोस्तों, ये मात्र एक शो, ये शो जो है ना वो सिर्फ एक नाम नहीं है, एक जज्बा है। यहाँ हम बात करते हैं उन फरिश्तों की जिन्होंने समाज के अंधेरों को मिटाने के लिए खुद को मोमबत्ती बना दिया। हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने बड़े बड़े मंचों से नहीं बल्कि जमीन से जुड़कर बदलाव की कहानी लिखी। आज की महफिल सजेगी ऐसे ही एक जज्बे के नाम से, जी हाँ, दिल ए रुबानी, स्वागत है आपका। और यहाँ पर हम किन के बारे में बात करेंगे ये तो मैं आपके साथ साझा करूंगी, पर फिलहाल ज्ञानचंद जी के ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है ना। तो एक बार ना ज्ञानचंद जी जो है, श्रीमती ज्ञानचंद जी मायके से वापस आई, तो जैसे ही श्रीमती ज्ञानचंद जी आई, ज्ञानचंद जी ने दरवाजा खोला और खोलते हुए हंसने लगे। तो इस पर श्रीमती जी ने पूछा कि क्या हुआ ज्ञानचंद जी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि हाँ, कल ही गुरुजी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करना चाहिए, बस इसीलिए। अब इसके बाद में उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा ये मुझे आपके साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं ना। चलिए, खैर, हम पहुंच चुके हैं ऐसे सेगमेंट में जहां पर हम दिल ए रुबानी में बात तो करेंगे, पर फिलहाल मैं आपको इस शो में जुड़ने का आह्वान करती हूँ, क्योंकि भाई जब आप जुड़ते हैं तो समा और भी मस्ताना हो जाता है।
2: तू भी आ जा के आ गई रुत।

101.9 और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब आप सुन रहे हैं दिल ए रुबानी आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ। और आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। जी हाँ, वो भले ही जो है एक वास्तुकार थे, पर एक वास्तुकार से कैसे वो इस क्षेत्र में उतरे, वो मतलब एक सामाजिक सेवा तक, उनकी बात ही निराली है। जी हाँ साथियों, तेची गुबिन ने, जी हाँ तेची गुबिन, उन्होंने चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर काम किया, इमारतों का डिजाइन तैयार किया, दूर दराज के सीमावर्ती गांवों की यात्रा की, स्वदेशी परंपराओं की वकालत की और अरुणाचल प्रदेश भर में सामाजिक सेवा में संलग्न रहे तेची गुबिन। और भी इनके बारे में जानकारी साझा करूंगी तो आपको ये बता दूं कि 1 नवंबर सन 1964, जी हाँ 1 नवंबर सन 1964 को जन्मे गुबिन ने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में वास्तुकला का अध्ययन किया था और सन 1988 यानी कि 1988 में स्नातकी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। और यहाँ पर उनके बारे में कुछ और बातें मैं साझा करूंगी, पर फिलहाल इस प्यारे से गीत के बाद

0: जी हाँ साथियों, आप यदि साथ देने का वादा करते हैं तो हम भी यूं ही मस्त नगमे लुटाएंगे, पर फिलहाल आपको एक अहम जानकारी से अवगत कराएंगे।
1: मोदलु पिड़दामा इन्वेस्टिंग पाठन्नी।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: और साथियों आकाशवाणी की उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं दिल है रुबानी, आपके धड़कनों पर जीती आरजी प्रीति के साथ. और इसी के अंतर्गत हम आपके साथ मैसेजेस भी हम आपके शामिल करेंगे, क्योंकि ये भी आपके दिल की ही बात है. तो भाई मैसेज काफी सारे लोगों ने भेजा है. मैसेज भेजा है बसवंत जी ने शांतिनगर से, कहते हैं कि सबसे अच्छा क्या है? समय. सबसे बुरा क्या है? वो भी समय. तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो वो कहते हैं समय का क्या बात है. और आगे कहते हैं कि रेनबो के लिसनर्स को नमस्ते, नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, सभी की ओर से आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं. और प्रीति जी आपकी आवाज़ सुन के काफ़ी दिन हो गए, लास्ट वीक आप आए थे लेकिन मैसेज नहीं कर पाया. ओके ओके बसवंत जी, कोई बात नहीं, आज आपने मैसेज कर दिया. आपका मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा हमें. और मैसेज भेजा है रेडियो सर्वर शौकीन जी ने, जिन्होंने गीत की फरमाइश की थी जो हमने पूरी कर दी है, और कहते हैं कि गीत की फरमाइश पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. भाई साथियों हम आप ही में से आप ही की फरमाइश आप तक पहुंचाते हैं. और यदि साथियों आप भी, जी हाँ आप ही से कह रहे हो जो बिल्कुल आप ऐसे नाराज़ से बैठे हैं, नहीं नाराज़ होने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है. यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, फिर कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222. स्टे ट्यून्ड. और यहाँ पर एक विशेष जानकारी आप तक पहुँचा दिए देते हैं और फिर आपसे जुड़ेंगे. జుడే రయ్యగా రెయిన్బో ఎఫ్ఎం కే సాత్.
2: 2026 మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన మరియు అమ్మకం అక్టోబర్ 7 నుంచి 18 వరకు ఉదయం 10:30 నుంచి రాత్రి 9:30 వరకు హెచ్ఎండిఏ గ్రౌండ్, ప్రసాద్ ఐమాక్స్ పక్కన హైదరాబాద్. తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాలు తయారు చేసిన హస్తకళా వస్తువులు, చేనేత వస్త్రాలు, పిండి వంటలు మరియు ఇతర ఉత్పత్తులు ఒకే చోట సరస్ మేళా 2026లో. రంగురంగుల పూల బతుకమ్మ ఆటపాటలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తులు మీకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. అందరూ ఆహ్వానితులే. మీరు కొనే ప్రతి వస్తువు గ్రామీణ మహిళా శక్తికి అండ. జారీ చేయువారు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం.
1: और आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर मैसेज भेजा है हिंदुस्तानी दिल से इकबाल जी ने. कहते हैं नमस्कार प्रीति जी, चमत्कार आरजे प्रीति जी ने. चमत्कार कुछ नहीं है भाई, बस आप में से हम भी एक हैं. और साथ ही आप लिखते हैं कि काश दिल की आवाज़ में इतना असर हो जाए, काश दिल की आवाज़ में इतना असर हो जाए, हम आपको याद करें और आपको खबर हो.

जाए। वाह क्या बात है। आगे कहते हैं कि आज खुदा से इतनी ही दुआ है कि आप जो भी चाहो वो हकीकत हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैसेज किया है परेश ने कोठी से, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तो चलिए उसी ओर बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं दिल ए रुबानी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं तेची गुबिन के बारे में। और जहां तक उनकी सेवा की बात करूं तो बताया जाता है कि उन्हें वो जुड़ाव कैसे हुआ, उसके बारे में पहले आपके साथ साझा करती हूं। बताया जाता है कि जब वे मात्र 4 वर्ष के थे तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया था, और माताजी के जाने के बाद वे बेहद शांत और अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट हो गए थे। इस अकेलेपन में उन्होंने चित्रकारी और स्केचिंग को अपना साथी बनाया, और इसी पेंटिंग के हुनर ने आगे चलकर उन्हें वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की ओर प्रेरित किया। और उन्होंने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ाई की, और सन 1988 यानी कि 1988 में अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग यानी कि APPWD में शामिल हो गए, और वहां से वे मुख्य वास्तुकार यानी कि चीफ आर्किटेक्ट के रूप में सेवानिवृत्त हुए। और उनके आगे के सफर के बारे में भी हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश इस प्यारे से गीत की ओर बढ़ती है, जिसकी फरमाइश की है बेगम बाजार से क्या नाम है इनका, शशिकला जी ने। ओके, स्टे ट्यून्ड। साथ ही यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: और साथियों आकाशवाणी की उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं दिल ए रुबानी. जी हाँ, और दिल रुबानी में आज हम बात कर रहे हैं तेची गुबिन के बारे में. और बताया जाता है कि तेची गुबिन के पिताजी जो हैं वो स्वदेशी डोनी पोलो यानी कि सूर्य और चंद्रमा धर्म के एक पुजारी थे, और अपनी संस्कृति को लुप्त होने से बचाने के लिए तेची गुबिन ने अपने आर्किटेक्चर के हुनर का उपयोग किया और अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती गाँवों में लगभग 600 से अधिक डोनी पोलो सांस्कृतिक केंद्रों यानी कि डोनी पोली कल्चरल क्लब्स का, कल्चरल सेंटर्स का उनको डिज़ाइन किया, तैयार कर जो है उन्हें स्थापित करवाया. और आदिवासियों की संस्कृति, धर्म और पहचान को बचाने के लिए उन्होंने करीब 4 दशकों तक, जी हाँ साथियों, 4 दशकों यानी कि 4 decades, लगभग 40 साल तक 90 से अधिक अत्यंत सुदूर और दुर्गम गाँवों की यात्राएँ पैदल की. जी हाँ, यात्राएं की ये समझ में आता है पर पैदल की. और इसके अलावा चीन, म्यांमार और भूटान की सीमाओं से सटे इन सुदूर गांवों में जाकर उन्होंने स्थानीय लोगों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ा और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय तिरंगा फहराकर वहां के निवासियों में देश के प्रति गौरव और गरिमा की भावना जगाई. और साथियों, और भी उनके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे पर फिलहाल हम यहाँ पर बढ़ते हैं आप ही में से आप ही की फरमाइश की ओर. स्टे ट्यून्ड.

फरमाइश की है। तो चलिए हम उसी प्यारे से गीत की ओर बढ़ेंगे। साथियों, वैसे यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम।

खाने के बारे में बताएंगी, दूसरी तरफ आप कह रही है लंच करके रेडी हो जाओ, ये कैसी दुविधाएं, अब ऐसी दुविधाएं। तो चलिए खैर जो भी है, आप वो लक्की जी के साथ ही सलटाइएगा। फिलहाल मैं आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति इसी वादे के साथ विदा लेती हूँ कि पुनः बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करने आएंगे। स्टे ट्यून्ड।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब ऐसे प्रोग्राम नए रंग।

0: हरफे ताबिंदा अभी आप सुन रहे थे, पेशकश थी एमए हाई की। अब आइए दोस्तों सुनते हैं बस में नज़्म सिलसिले तहत सैयद समीउल्लाह हुसैनी समी की पेश करदा नज़्में।
1: आपके सामने एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। तवज्जो चाहता हूँ आप सामाइन का। जो दिल जला कर करे उजाला, सलाम करती है उनको दुनिया। जो दिल जला कर करे उजाला, सलाम करती है उनको दुनिया। मिटाए दुनिया से जो अंधेरा, सलाम करती है उनको दुनिया। मिटाए दुनिया से जो अंधेरा, सलाम करती है उनको दुनिया। बने यतीमों का जो सहारा, सलाम करती है उनको दुनिया। जो दर्द रखते हैं दूसरों का, सलाम करती है उनको दुनिया। जो दर्द रखते हैं दूसरों का, सलाम करती है उनको दुनिया। जो बेकसों को मदद न मिलती, वो गम के तूफान में डूब जाते। जो बेकसों को मदद न मिलती, वो गम के तूफान में डूब जाते। बने जो तूफान में किनारा, बने जो तूफान में किनारा। सलाम करती है उनको दुनिया। दिलों में जिनके खुदा का डर है, दिलों में जिनके खुदा का डर है। खुलूस का जिनके दिल में घर है। जो दिल में रखते हैं नेक जज्बा, सलाम करती है उनको दुनिया। गरीब मिल्लत की बेटियों की, खुदा की खातिर करा के शादी। करे जो ख्वाबों को उनके पूरा, सलाम करती है उनको दुनिया। जो दिल जला कर करे उजाला, सलाम करती है उनको दुनिया। मिटाए दुनिया से जो अंधेरा, सलाम करती है उनको दुनिया। और एक एक मतला एक शेर मुलाहजा कीजिए। शुरू करते ही कोशिश कदम जमाने की, ज़माना करने लगा साजिशें गिराने की। शुरू करते ही कोशिश कदम जमाने की, ज़माना करने लगा साजिशें गिराने की। हमें ढकेल के पीछे वो बढ़ गया आगे, हमें ढकेल के पीछे वो बढ़ गया आगे। सज़ा मिली ये हमें रास्ता बताने की, सज़ा मिली ये हमें रास्ता बताने की। एक और एक मतला एक शेर के इरादे देख के काली घटा के, इरादे देख के काली घटा के। बदल जाते हैं तेवर भी हवा के, बदल जाते हैं तेवर भी हवा के। हसद जिद शान हट धर्मी तकब्बुर, हसद जिद शान हट धर्मी तकब्बुर। ये रिश्तेदार हैं सारे अना के, ये रिश्तेदार हैं सारे अना के। मुलाहजा कीजिए एक मतला और एक शेर के। दोस्ती के पेड़ बाकी हैं मगर साया नहीं, दोस्ती के पेड़ बाकी हैं मगर साया नहीं। उन पाउल फतह और मुरव्वत का कोई पत्ता नहीं, उन पाउल फतह और मुरव्वत का कोई पत्ता नहीं। मसलहत की गर्द से मैले हैं सारे आईने, मसलहत की शेर देखेगा सामाइन के। मसलहत की गर्द से मैले हैं सारे आईने, इसलिए बेदाग कोई आजकल चेहरा नहीं, इसलिए बेदाग कोई आजकल चेहरा नहीं। और एक एक मतला एक शेर। जो सर कटा के भी दस्तार को बचाते हैं, जो सर कटा के भी दस्तार को बचाते हैं। वही मकाम ज़माने में ऊंचा पाते हैं, वही मकाम ज़माने में ऊंचा पाते हैं। कमाल इससे बड़ा है कोई तो बतलाए, कमाल इससे बड़ा है कोई तो बतलाए। हम इस ज़माने में रोटी हलाल खाते हैं, कमाल इससे बड़ा है कोई तो बतलाए। हम इस ज़माने में रोटी हलाल खाते हैं। जैसा कि सामाइन मतले और कुछ अशार है आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। मुलाहजा कीजिए कि मकाम हम जो ज़माने में कुछ बनाने लगे, मकाम हम जो ज़माने में कुछ बनाने लगे। तरह तरह से हमें लोग आजमाने लगे, तरह तरह से हमें लोग आजमाने लगे। जो आसमानों पे अपना दिमाग रखते थे, जो आसमानों पे अपना दिमाग रखते थे, संभल के चलने जमीन पर उन्हें जमाने लगे। ये इस कबील का आखिरी शेर है कि कुरेदा जब भी गया इनको फ़न के नाखून से, कुरेदा जब भी गया इनको फ़न के नाखून से, अदब के ज़ख्म समी और मुस्कुराने लगे। बल्कि ये इसको मैं मख्ता कहना चाहिए था, अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरेदा जब भी गया इनको फ़न के नाखून से, अदब के ज़ख्म समी और मुस्कुराने लगे। कुछ और आपकी खिदमत में गज़ल और कुछ अशआर पेश करना चाहूँगा, बल्कि यूँ कहूँ कि एक ख़ता है, मुलाहज़ा कीजिए, बल्कि दो ख़तात पेश कर रहा हूँ। खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, जालिम की हर सदा में तासुब का साज है। खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, जालिम की हर सदा में तासुब का साज है। जालिम को ढील देता है अल्लाह भी क्या करें, सच है हराम जादे की रस्सी दराज है। ये मिसरा मोहतरम शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। उन्होंने कहा था कि सच है हराम जादे की रस्सी दराज है, उसी पे मैंने तज़मीन की है। खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, जालिम की हर सदा में तासुब का साज है। जालिम को ढील देता है अल्लाह भी क्या करें, सच है हराम जादे की रस्सी दराज है। मुलाहज़ा कीजिए और एक कता के, मुनफरत करने वालों से मोहब्बत छीन लेता है, मुनफरत करने वालों से मोहब्बत छीन लेता है, खयानत करने वालों से अमानत छीन लेता है। यही पैगाम है अपना हर एक जालिम हुकूमत को, खुदा जालिम के हाथों से हुकूमत छीन लेता है। सामिन, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, बल्कि एक गज़ल पे मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात। मुलाहज़ा कीजिए, मतलब है कि आज़ाद हूँ मगर मैं रिवाजों में कैद हूँ, आज़ाद हूँ मगर मैं रिवाजों में कैद हूँ, सच कह रहा हूँ झूठे उसूलों में कैद हूँ। दुनिया तो देखती है उजालों में ही मुझे, दुनिया तो देखती है उजालों में ही मुझे, लेकिन मैं ज़िंदगी के अंधेरों में कैद हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी के अंधेरों में कैद हूँ। सच बोलना गुनाह है तो मैं हूँ गुनाहगार, मैं ऐसे बेशुमार गुनाहों में कैद हूँ। ऐ मौत तुझको देने मेरे पास कुछ नहीं, ऐ मौत तुझको देने मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो हयात की अभी सांसों में कैद हूँ। इंसानियत के रिश्ते को सच मानता हूँ मैं, इंसानियत के रिश्ते को सच मानता हूँ मैं, फिर क्यों मैं ज़ात पात के रिश्तों में कैद हूँ। मोहतरम सामिन इकराम, ये नैरंग प्रोग्राम में आज के कलाम शायर बाज़ुमान शायर में समीउल्लाह हुसैनी समी, यानि कि मैं अपना कलाम आपके हुजूर पेश कर रहा था। अब इजाज़त दीजिए, शब खैर। मोहतरम सामिन, नैरंग के सामिन, मुलाहज़ा कीजिए, एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसका मतलब है कि लेना पड़ेगा जायज़ा अपनी उड़ान का, लेना पड़ेगा जायज़ा अपनी उड़ान का, ख़त नापना है मुझको अभी आसमान का, ख़त नापना है मुझको अभी आसमान का, कर दे हिसाब ए खुदा इस बागबान का, कर दे हिसाब ए खुदा इस बागबान का, मूजी ख्याल रखता नहीं गुलसितान का, मूजी ख्याल रखता नहीं गुलसितान का, वो मुल्क का ख्याल भला किस तरह रखे, रखता नहीं ख्याल जो अपने मकान का, मैं तो ज़मीं की गोद में पलकर बड़ा हुआ, मैं तो ज़मीं की गोद में पलकर बड़ा हुआ, खर्जा चुका रहा हूँ मगर आसमान का, दिल और दिमाग दोनों को समझाने के लिए जू माना लहजा रखता हूँ अपनी ज़ुबान का। उर्दू में शेर कहते हैं इबलाग के लिए, उर्दू में शेर कहते हैं इबलाग के लिए, एहसान मानते नहीं उर्दू ज़बान का, सर पर मेरे किसी का नहीं साएबान तो क्या, सर पर मेरे किसी का नहीं साएबान तो क्या, साया बहुत है मेरे लिए आसमान का, साया बहुत है मेरे लिए आसमान का, मेहमा को चाहिए कि वो आ जाए वक्त पर, मेहमा को चाहिए कि وہ آ جائے وقت پر، اتنا تو وہ خیال رکھے میزبان کا، اتنا تو وہ خیال رکھے میزبان کا، گویا کہ داستان ہے میری سب کی داستان، گویا کہ داستان ہے میری سب کی داستان، ہر ایک میں ہے ذکر میری داستان کا۔ مقتا ہے کہ دہلیز پر نہ بیٹھو کبھی فکر کی سمیع، دہلیز پر نہ بیٹھو کبھی فکر کی سمیع، دروازہ ہے کھلا ہوا دل کے مکان کا، دروازہ ہے کھلا ہوا دل کے مکان کا۔ سامعین، کچھ اور ایک مکمل غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ مطلب ملاحظہ کیجیے، لفظوں کو تیر نہیں پھول بنایا جائے، لفظوں کو تیر نہیں پھول بنایا جائے، زخم پر پھول کا مرہم لگایا جائے، زخم پر پھول کا مرہم لگایا جائے، اس کو دنیا میں تماشا نہ بنایا جائے، اس کو دنیا میں تماشا نہ بنایا جائے، زخم دل اپنا کسی کو نہ بتایا جائے، زخم دل اپنا کسی کو نہ بتایا جائے، ظرف کو صبر کی قامت سے بڑھایا جائے، ظرف کو صبر کی قامت سے بڑھایا جائے، درد دل اپنا کسی کو نہ سنایا جائے، درد دل اپنا کسی کو نہ سنایا جائے، حسن کی موج حوس اس کو ڈبو دیتی ہے، حسن کی موج حوس اس کو ڈبو دیتی ہے، کشتی عشق کو بس اس سے بچایا جائے، کشتی عشق کو بس اس سے بچایا جائے، گر بچانا ہو محبت کا گلستان تم کو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے نبھایا جائے، ظرف والے ہی اٹھاتے ہیں زمانے کے ستم، جشن غم اس لیے پھر کیوں نہ منایا جائے، بدلہ احسان کا احسان کے سوا کیا ہوگا، بدلہ احسان کا احسان کے سوا کیا ہوگا، قرض احسان کا احسان سے چکایا جائے، اب تو گلشن میں ہنسی پھول لپٹ جاتے ہیں، اپنے دامن کو ذرا ان سے بچایا جائے، دل پہ لکھنے کے لیے لفظ محبت کو سمیع، دل پہ لکھنے کے لیے لفظ محبت کو سمیع، نون فا را کو اور تا کو مٹایا جائے، دل سے نفرت کا ہر ایک حرف مٹایا جائے۔ بہت شکریہ۔
0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے بزم نظم سلسلے تحت سید سمیع اللہ حسینی سامی کی پیش کردہ نظمیں۔

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादिया है कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: यकीनन दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके हम एक महफूज सफर कर सकते हैं। समय रात के 9:48 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। अब वक्त हो गया है कि गीतों के कार्यक्रम गीत सुरीले गाते जाएगा।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कैफियत पर जो हम सब के अंदर होती है, जो हमें इंसान बनाती है। ये है एहसास। एहसास महसूस यानी फील होने वाली एक कैफियत है, जैसे खुशी, गम, तकलीफ, निदामत, या जब कोई अपना दोस्त अचानक याद आ जाए जिसके साथ गुजारे गए खूबसूरत पल हमें याद आ जाते हैं। वहीं से शुरू होता है एहसास का सिलसिला, एक खुशी का सिलसिला। आइए सुनते हैं इसी बारे की, जिसको लिया है हमने फिल्म जो जीता वही सिकंदर से।

दोस्तों, पहली कोशिश, पहली कामयाबी, पहला कुमार और पहली जीत जिंदगी में पहली दफ़ा होती है। और जब ये एहसास नया नया होता है तो कहने या बोलने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, और इसी एहसास से सब कुछ समझ आ जाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से।

दोस्तों कहते हैं कि कभी-कभी कुछ न कहना ही बेहतर होता है। और जब ज़िंदगी यानी इंसान की ज़िंदगी अंदर यह एहसास हो कुछ पाने का, कुछ कर गुज़रने का और कुछ अच्छा मकसद पाने का, बस इसकी मुखालिफत के बग़ैर इंसान चल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ, ताकि मंजिल के साथ साथ वो कामयाबी से हमकिनार हो। आइए सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म परदेश से।

साथियों, ज़िंदगी में हमारे अपनों की और हमारे चाहने वालों यानी वेल विशर्स की अहमियत होती है, और जो कोई ऐसा जो बिना कहे आपकी बात समझ ले और एहसास कर ले, तो इसका साथ ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाता है। आइए इसी पर सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म आशिकी 2 से।

अक्सर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे साथियों की दूरी या बात ना होने पाने की वजह से यह एहसास एक धीमी सी उदासी में बदल जाता है। और ऐसे में तन्हाई जब घेर लें और दिल माजी की यादों में खो जाएं तो दिल की हालत कुछ ऐसी होती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे ज़िंदगी के सफ़र में एहसास की अहमियत पर। वैसे दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी हमेशा सीधी या यकसा नहीं होती। कभी लगता है कि ज़िंदगी हसीन है, कभी लगता है ज़िंदगी कठिन है। लेकिन अगर ये एहसास हो कि वक्त एक जैसा नहीं रहता बल्कि बदलता रहता है और हर आने वाला दिन एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ आता है ताकि ज़िंदगी बेहतर हो। आइए सुनते हैं इसी पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मशाल से।

दोस्तों हमारे ज़िंदगी में दोस्तों की हम कदर करते हैं और अहमियत भी देते हैं। अक्सर दोस्तों में थोड़ा मिजा यानी ह्यूमर, नोक झोंक, कभी गुस्सा, कभी आमादगी, कभी नरमी का उंसर देखा जाता है। लेकिन जब कोई हमसे रूठ जाता है या नाराज़ होता है तो असल में यही चीज़ एक दूसरे को जानने और दरगुजर करने का मौका भी फराहम करती है और ये एहसास दिलाता है कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं और हमारा ख्याल कितना रखते हैं। आइए इसी पर सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी के गीत से। आइए सुने।

वैसे दोस्तों, दोस्तों में नाराज़गी दूर होने के बाद वापस मिलने की खुशी का एहसास और भी ख़ास बन जाता है। ज़िंदगी में खट्टी मीठी यादें ही तो इंसान को जीने का हौसला देती है, और यही यादें इंसान को ज़िंदगी को खूबसूरत पल भी देती है। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म तमाशा से।

दोस्तों, जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि कौन ज़िंदगी में इसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, तो दिल में ये एहसास जागता है कि बस वो हमेशा साथ रहे, और यही साथ ज़िंदगी में खूबसूरत और लासानी लम्हात ले आए। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसको लिया है हमने फिल्म जन्नत से।

दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि दिल की बात ज़बान पर लाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जब कोई इसका इजहार कर जाए तो ये एक अलग ही एहसास लगता है। इसी पर सुनकर आइए सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म कभी अलविदा ना कहना से।

दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब इसमें एहसास शामिल हो। एहसास ज़िंदा होने का, एहसास कुछ कर गुज़रने का, एहसास किसी की का ख्याल करने का। आइए इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म कहो ना प्यार है से।

दोस्तों, एहसास चाहे किसी भी रूप में, खुशी का, गम का, दोस्ती का या मोहब्बत का, इसे महसूस करना चाहिए क्योंकि यही जिंदगी की असल रौनक है। आइए दोस्तों, सुनते हैं गीत सुरीले का तेजा में, आखिरी गीत जिसको लिया है हमने फिल्म बदलापुर से।

अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले का तजा में कुछ सुरीले गीत। दोस्तों प्रोग्राम नारंग के आखिर में आइए सुने पयाम शब, पेश कर रहे हैं सैदी।

इसी पयाम शब के साथ दोस्तों आज का नए रंग प्रोग्राम अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 MHz पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग

उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra Karyakram mein aapka swagat hai. प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें. कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी नमस्कार, धन्यवाद.
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभा रोहतगी.
0: थैंक यू अमित. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363. Country's retail inflation rises to 5.54% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स में 500 से अधिक अंकों का नुकसान, निफ्टी 22,363 के स्तर पर दर्ज. सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी.

0: पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
1: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925. The Nifty dropped 157 points or 0.7% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index edged up marginally and the small-cap 100 index gained 1.4%.
0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
1: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, hospitals shed 2%, FMCG fell over 1.3%, and PSU banks dropped 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3%, and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined and shares of 281 companies remained unchanged.
0: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ नांगली दिल्ली से।
0: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है, तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो कालाबाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा, मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं?
0: जी, जी,
2: बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसके थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए।
0: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्यौहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफ़ी तेज़ी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहां तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए, स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाएंगे, कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ, उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है, 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended, after 8 weeks that the market closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
3: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is the one of the big problems. So if you see the crude price is almost around $105
1: yes.
3: a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arab. That means the more disruptions possible in the crude oil market.
1: Hmm.
3: Then there was expectation that

0: Inflation is expected to go up, as we have seen that inflation is now 5.54%, and that is giving a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike.
1: Yes.
0: So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks.
1: Yeah.
0: So combination of all the bad news had an impact on the stock market, and market is still looking for some kind of positive news, but unfortunately they are getting nothing, and that is why we are seeing a lot of selling pressure in the market.
2: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं. रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम मिसेस के नाम पर कर सकता हूँ क्या? ये सवाल है. और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे? ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहेगा?
0: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफर जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है. बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुंच जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा. अभी करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है. दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेजी दिखेगी. जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में तीन हैं, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका. और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा.
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल. संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली. संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा.
0: गुड इवनिंग.
4: हाँ सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75. अब वो पिछले तीन चार पांच दिन से देर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय.
0: सर जस्ट अ मिनट, कोर इन्फ्लेशन इज नथिंग टू डू विद द ओनियन, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन इज माइनस फूड एंड फ्यूल. या
4: आई नो, व्हाट आई मीन बाय कोर इन्फ्लेशन कंसर्निंग द कंज्यूमर डेली बाइंग.
0: सो प्लीज बी क्लियर ऑन दैट सर. थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड.
4: एंड सेकेंड, सो जो गवर्नमेंट के जो राइट जो गवर्नमेंट के डोमेन में आती है कंज्यूमर आइटम सप्लाई करना, उनकी सप्लाई तो ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी चाहिए.
0: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं तो जो 5.54% महंगाई के आंकड़े हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफी ज्यादा है. और दूसरे अलावा और भी तीन सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ कीजिएगा भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू की बात करें, यानी कि टॉप फाइव आइटम्स में चार आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं. अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति इसकी क्यों नहीं बढ़ा पा रही है. इस बार प्याज की पैदावार में थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है. तो मदर डेयरी पे जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहां पर उपलब्ध है जहां तक मेरी जानकारी, जितनी मेरी समझ मैंने देखा है. और बाकी जो जिसको कहते ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी वो भी चल रहा है, लेकिन हाँ एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है. एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है वहां से नई फसल जल्दी ही बाजार में आएगी, तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं।
2: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
0: और नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है।
1: जी
2: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगड़ नहीं है कच्चे तेल की कीमतों ने, उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटीमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है। क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहां से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा या बाजार को वहां से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
0: देखिए पॉजिटिव तो वहां से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है, और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है
1: जी।
0: ब्याज दर बढ़ती है तो हम आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक से पैसा, बैंक में ही पैसा रखो या ऐसे जगह पे रखो जहां आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफी ऊंची है और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है। अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे। दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे, शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई है।
1: शिशिर, यू नो अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ ट्रिगर्स, बट बिफोर आई कम टेक माय क्वेश्चन टू यू, वी हैव द नेक्स्ट कॉलर विद अस ऑनलाइन। नितिन इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। नितिन, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: नमस्कार जी।
1: नमस्ते, अपना सवाल पूछे।
5: सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड आएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनों के, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे तो उस सिक्के को हम सेल करेंगे तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरे की पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे खरीद लिया है तो 1 साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
1: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
0: मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला आपने अगर 1 साल के लिए ब्याज के लिए 1 साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है और वहां पर आपने 1 साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको 1 साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने की बात नहीं, अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा। तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं तो किसे आप बेच रहे हैं, किसी एक संगठित जगह पे बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पे जाते हैं तो आपको नगद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है, गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आपको उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
1: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट एज यू नो अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, it's, they are not getting positive triggers from anywhere, but put an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because there's a, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices in the stock market, you know, share prices. And so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Hmm. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
1: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we say, oh, we are going to lose everything. Yeah. But those are the, I mean, something, most of the time it is the notional loss.
1: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
1: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices. And you should also have some money put into the mutual fund.
1: Yes.
0: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
1: Right.
2: Agle shrota ke taur pe Maharashtra se KK Shukla ji hamare saath maujood hain. Ji, apna sawal poochiye.
6: Ji, namaskar.
2: Namaskar.
6: Mera question ye tha ki tier 2 jo city hai, matlab tier 1 mein jaise Mumbai hua, Kolkata hua ya bada city, वहाँ बंदरगाह होता है पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत जाता होता है. टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
0: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं. और आपको एक चीज़ बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है. इनफैक्ट हम आपको बताएं कि IT कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पर खोले हैं जहाँ पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहाँ पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहां पर खोले हैं. तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं. और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई है या फिर वहां पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है. तो आप अगर छोटे शहर में है या मझोले शहर में है तो वहां पर आर्थिक परिस्थितियां और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है.
2: शिशिर, अगर रुपए की स्थिति पे आते हैं, रुपए ने तकरीबन आज 1 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी. हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद CRR रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही है.
1: CRR रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने.
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है. उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ये असर कुछ समय तक बना रहेगा.
2: और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर. एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ. जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा.
1: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.54% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded in August. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas increased to 6.08%, while in urban regions it rose to 4.88%, and food prices continue to remain a key driver of inflation. A very brief comment from you.
0: Anubha, just one thing. It's a median target rate of 4%, which we have breached. In fact, that was breached last month itself. Now the concern is that if it exceeds 6%, then there will be a bigger problem. So, and as of now, we are expecting that it will breach.
1: It will breach.
2: Delhi se Shri NP Singh hamare saath maujood hain. Ji,
7: sir, good evening to the all panelists. I just want to know that it's about UPI. If the UPI amount is 3,000 and we divide the payment into 2,000 and 1,000 in two times, so then also it will attract the, you know, the surcharge.
0: If it is less than 2,000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2,000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2,000 rupees and 1,000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2,000, for the 2,000 rupees it will, because 2,000 or more.
1: Ji.
0: So it will attract MDR, but please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer, it is a shopkeeper who has to pay at the time of getting.

0: getting money from the bank or the institutions.
1: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है. यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है. भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया. हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही. इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया. हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए. इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं. जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
2: हेलो सर, नमस्ते. नमस्ते, मैं आकाश बोल रहा हूँ. मेरे दो सवाल है. पहला सवाल, मेरी एफडी बनी हुई है तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया. तो दूसरा सवाल, जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा हुआ अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए? और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
0: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना, उसी शर्त पे भुगतान होगा. ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है. रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही तो आपको नुकसान होगा.
3: जी, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. द 2026 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हैज बीन अवार्डेड टू अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स रॉबर्ट ई हॉल एंड माइक वुडफोर्ड फॉर डेवलपिंग माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स दैट हेल्प पॉलिसी मेकर्स स्टेबलाइज इकोनॉमीज ड्यूरिंग बूम्स एंड रिसेशंस. द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज सेड देयर वर्क हैज स्ट्रेंथन्ड द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. द नोबेल कमिटी सेड द इकोनॉमिस्ट developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
4: Yeah, my quick question to Market Mantra team and Sarit. सर, जो भी गलत हो सकता था वो शायद हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो हैव वी टच्ड द रॉक बॉटम? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन? रिबाउंड
0: बाजार कितने स्तर पे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां.
3: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030. मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक and Trade Committee in New Delhi today. The minister called upon businesses in both countries to translate the opportunities created by the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement into expanded trade, investment, partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading over 1.2% higher at $92.98 per barrel at the time of writing this report.
1: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 1,48,061 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. बहुत संक्षेप में, अगर दोनों चीजों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नजर आ रहा है.
0: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर होगा. और कच्चे तेल की जहां तक बात करें, सऊदी अरब और उन जगह

0: हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते
1: जी। शिशिर कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363। कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर। And global crude oil prices rise over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:40 और 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। यह है गीत मेरे मनमीत और आज आपके संग है अर्पना। शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत के लता जी की आवाज के साथ। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। और इसके बाद किशोर कुमार की आवाज होगी और आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, आर टी बर्मन का संगीत होगा, फिल्म का नाम है अलग अलग। तो बैक टू बैक इन दो फिल्मों का आप गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मनमीत में।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, और संगीत जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, दो रास्ते फिल्म से ये गीत होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। इनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। एस्टोनिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में एस्टोनियाई संसद भवन रीकी कोगू में पद की शपथ ली। उन्होंने श्री अलार कारिस का स्थान लिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान

अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है जीने की राह।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। ये जो यादें होती हैं ना, उनमें से कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी तारीख की, किसी मौके की जरूरत नहीं होती। जैसे एक खुशबू, एक गीत और एक मौसम। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे कि अगर कोई भी अच्छी याद जुड़ी हो तो पूरा का पूरा अतीत सामने आ जाता है।

एक तस्वीर बन जाती है। बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू भी कभी कभी किसी पुराने आंगन तक ले जाती है। और यादों की तो अपनी कोई घड़ी भी नहीं होती, वे जब आती हैं तो अपने साथ पूरा समय लेकर आती हैं। कभी मुस्कुराहट देती हैं, कभी आंखें नम कर देती हैं, लेकिन हर याद का मतलब लौटना नहीं होता। कुछ यादें हमें ये भी बताने आती हैं कि हमने कभी किसी पल को पूरी शिद्दत से, बहुत प्यार से जिया था। इसलिए आज जो याद आए उसे प्यार से याद कीजिए और फिर उसे उसकी जगह रहने दीजिए और रात को आगे बढ़ने दीजिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है हमशक्ल।

ठीक जैसे यादों की कोई घड़ी नहीं होती, वैसे ही जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो अक्सर शब्दों

में नहीं कही जाती। अगर शब्दों में दिल की बातों को बांधने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो या तो किसी गीत की धुन में उतरती है, या किसी खुशबू में लौट आती है, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ यादों में उतर जाती है। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये भी थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छिपाने की कोशिश करते हैं उतने ही भीतर से गहरे होते चले जाते हैं, और रात रात उन्हें आवाज देकर बहुत पास बुलाती है। शायद इसलिए देर रात सुने गए गीत, देर रात कही गई कोई बात सीधे दिल पर दस्तक देती है। दिन हमें व्यस्त रखता है और रात हमें संवेदनशील बनाती है। तो आज अगर आपका भी दिल आपसे कुछ कहना चाहता हो तो उसे रोकने की कोशिश जरा भी मत करिए। उस हर एक भावना का, हर एक सेंटिमेंट, हर एक इमोशन का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी रात जो खुद के साथ गुजारनी होती है उसकी जरूरत होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और अगला गीत फिल्म मन की आंखें से आपके लिए।

और आज निशिगंधा में जब हम बात कर रहे हैं रात की, मन की और रात के संगीत की, यादों की, तो फिर एक और बात याद आती है जो सीधे रात से जुड़ी हुई है। रात दिन की थकती हुई कहानियों का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने का सबसे खूबसूरत वक्त है। जब शहर की आवाजें कम हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी के अपने की याद की तलाश है। किसी के पास यूं तो कहने को बहुत कुछ है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अनजान लोगों के बीच भी बहुत सारी कहानियों के साथ उपस्थित रहता है। तो इस रात अपने लिए कुछ पल जरूर संभाल कर रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। आज की रात ये कहती है कि आप अपने आप को महसूस करना सीखिए, खुद के साथ ठहरना सीखिए। और हमारा एफएम गोल्ड यानी कि ये रेडियो स्टेशन जो हमारे मन का रेडियो है, ये सबके साथ ठहरता है, आपसे आपकी बातें आप तक भी पहुंचाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निशिगंधा। निशिगंधा के बाद हमारे और भी कार्यक्रम होंगे। फिलहाल सुनते हैं एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत आप सभी के लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है नया दौर।

ये जो रात की चाय होती है ना, जी हाँ रात की चाय, बात जब रात की हो रही है, रात की यादों की हो रही है, तो रात की चाय को कैसे भूल सकते हैं। जो रात की चाय होती है ना, वो जाने क्यों दिन भर की बातों में घुल जाती है। पहली चुस्की जैसे कहती है, अब थोड़ा और अपने पास लौटो, और कभी इसी प्याले के साथ किसी का इंतजार किया था, याद है। मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखना और फिर खुद ही मुस्कुरा देना, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। कभी कोई सामने बैठा होता था और चाय ठंडी हो जाती थी, पर जनाब बातें नहीं थमती थी। आज वही प्याला अकेला है, मगर स्मृति अब भी गर्म है। शायद चीजें नहीं, उनसे जुड़े हुए पल हमें बार बार आकर छू जाते हैं। इसलिए अगली बार अगर चाय बनाइए जनाब, तो जल्दी जल्दी मत पीजिएगा। एक घूंट बीते कल के नाम और एक आज के नाम जरूर रखिएगा, और आखिरी चुस्की उस व्यक्ति के नाम रखिएगा जिसने कभी आपकी साधारण सी शाम को भी

बेहद खास बना दिया था, क्योंकि स्वाद जो है वो जीभ से उतर जाते हैं, लेकिन बातें और यादें सीधे जाकर स्मृति में घुल जाती हैं, बस जाती हैं। और ये जो बातें हैं ना रात के साथ, ये बार बार याद आकर मन के दरवाजे पर हौले हौले दस्तक देती रहती हैं। और अब अगला गीत निशिगंधा में मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरे सनम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाएं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतर खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने कल सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु को महिला सिंगल्स के शुरुआती दौर में कोरिया की एन से यंग के विरुद्ध कठिन चुनौती का सामना करना होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत से महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो आप पहला गीत सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये बातें हमने कई बार की हैं कि प्रेम को लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। प्रेम की व्याख्या को शब्दों में बांधना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम और या फिर सबसे आसान काम। प्रेम कभी किसी अनुबंध की पंक्ति में नहीं होता, वह तो उस सुगंध की तरह होता है जो फूल से अनुमति नहीं मांगता, फिर भी उसके साथ बना रहता है। उसका जन्म किसी नियम पुस्तिका में नहीं, बल्कि मन के अंदर धड़कते हुए विश्वास में होता है, जहां देना किसी गणना का विषय नहीं रहता। और ये प्रेम जो है ना, जब कर्तव्य का वस्त्र पहन लेता है, तब मुस्कुराहटों पर एक अदृश्य बोझ उतर आता है। हम साथ तो चलते हैं, किंतु उनकी ऊष्मा धीरे धीरे अनजानी होने लगती है। नेत्र मिलते हैं, पर उनमें वह आद्र चमक नहीं उतरती जो बिना कहे समूचा आकाश पढ़ लेती थी। कर्तव्य आवश्यक है, पर जीवन व्यवस्था संभालता है, घर को आकार देता है, रिश्तों को आधार देता है, किंतु प्रेम केवल आधार पर नहीं टिका करता। उसे चाहिए एक सहज स्पर्श की निष्कपटता, एक प्रतीक्षा की मधुर लय, एक स्मरण की भीगी गर्माहट, और वह अपनापन जो किसी कारण का मोहताज नहीं होता, जहां प्रत्येक स्नेहिल व्यवहार सिर्फ इसलिए निभाया जाए कि निभाना आवश्यक है, वहां भावों की धरती धीरे धीरे बंजर होने लगती है। और अब अगला गीत, फिल्म का नाम है जीने की राह, आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है कभी कभी।

सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयति। मैंने तुम्हें किसी गुलदान में नहीं रखा, ना ही किसी चमकते कोने में सजाया, जहां ऋतुएं बदलते ही रंग अपना परिचय खो बैठते हैं। मैंने तुम्हें रखा था एक ऐसे पन्ने के पास जहां अक्षर अभी भी अपने जन्म की गर्माहट संभाले हुए थे, जहां एक अधूरी पंक्ति प्रतिदिन अपना अर्थ बदलती थी और एक विराम चिन्ह पूरे आकाश के जितना विस्तृत लगता था। कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती, कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती, किंतु मुझे सदैव लगा कि उनका जाना ही उनकी पराजय नहीं होती। कुछ चीजें अपने रंग से नहीं, अपने स्पर्श की छाप से जीवित रहती हैं। इसलिए मैंने किसी उपहार की चमक से अधिक विचारों की रोशनी को चुना, क्योंकि कागज पर दर्ज एक अनुभूति वर्षों बाद भी उतनी ही ताजा मिल सकती है जितनी किसी पहली दोपहर में थी, जितनी किसी पहली दोपहर में थी। और अगला गीत, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है मोहम्मद रफी की।

जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है गूंज उठे शहनाई। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए तकनीक और परंपरा को साथ चलना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में निरामयता, दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निरामयता व्यक्ति, समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों की सभ्यतागत समझ की खोज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रतजगों का क्या होगा, अब मेरे रतजगों का क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। और आज सुरमई में अगला गीत, फिल्म का नाम है आसपास, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। कहां तक उन पर रखें बेरुखे का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखे का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अगला गीत, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आवाज है उदित नारायण और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना

पूरा एक जीवन साथ लेकर तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की हर सुबह, शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अगला गीत फिल्म का नाम है अभिनेत्री, आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं, चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो फिर सुनते भी हैं, चलो फिर सुनते भी हैं। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है, तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लोफर।

है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ और फिर मिलने के वादे के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक

0: आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया। ये स्वदेशी तकनीक प्रदर्शित करने और उद्योगों द्वारा उनके हस्तांतरण अपनाने तथा व्यवसायीकरण को सुगम बनाने के लिए विवरण सूची अनुसंधान और उद्योगों के बीच की दूरी पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms, and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer

तेरी आवाज में मेरी आवाज का मिल जाना, जैसे किसी ख्वाब का हकीकत बन जाना। तू एक गीत की पहली सी पंक्ति बन जाए, मैं उस गीत का हर लफ्ज गुनगुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने पहर में मैं अर्चना गोयल आपका स्वागत करती हूं। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अपने बेहद खास कार्यक्रम हमराही में। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। आज हम अकेले गुनगुनाने वाले गीत नहीं, बल्कि अपनी महफिल सजाएंगे जिसमें दो आवाजें हैं या किसी का साथ है। दो दिल हैं, दो एहसास हैं और एक खूबसूरत सी मोहब्बत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ।

साहेब बीबी और गुलाम। इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और सखियों को। क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जिसमें मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक वादा बन जाती है? प्यार में वादे करना आसान है लेकिन उन वादों को निभाना शायद वही सच्ची मोहब्बत की पहचान है। क्या आपने कभी किसी से ऐसा वादा किया है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? कोई ऐसा वादा जो सालों बाद भी आपके दिल में उसी तरह महकता है? तो सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

हरियाली और रास्ता फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। मोहब्बत का ये अंदाज भी कितना प्यारा है ना। कभी एक रूठता है तो दूसरा मनाता है, कभी एक शिकायत करता है तो दूसरा मुस्कुराकर उस शिकायत को भी प्यार में बदल देता है। और सच कहें तो रिश्तों में अगर थोड़ी नोक झोंक ना हो तो शायद प्यार की कहानी में कुछ कमी सी रह जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूठने में भी अपनापन है और मनाने में भी सम्मान, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां दोनों एक दूसरे के दिल की कद्र करें।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म सूरज से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।

0: दोस्तों, जिंदगी का सफर अकेले भी तय किया जा सकता है, लेकिन किसी अपने का साथ मिल जाए तो मुश्किल रास्तों पर भी चलने का हौसला आ जाता है। एक अच्छा हमसफर वो नहीं जो खुशियों में आपके साथ हंसे, बल्कि वो है जो आपकी खामोशी समझे, आपकी थकान को समझे और बिना कहे ये एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग अनजान रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मंजिल का पता पूरी तरह नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। रास्ते की अनिश्चितता अब उन्हें डरावनी नहीं लगती, क्योंकि साथ है एक दूसरे का।
1: हुस्न जब जब

रात गहराती जा रही है और इस रात के साथ हमारे गीतों का सफर भी और खूबसूरत होता जा रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि रात के समय कुछ गीत दिन के मुकाबले ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं? शायद इसलिए कि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है, उन बातों को याद करने का समय देती है जिन्हें हम अपनी व्यस्तता में कहीं पीछे छोड़ आए थे। ठीक कहा ना मैंने?

चांद निकले तो तेरा ख्याल आता है, दिल चुप रहे फिर भी सवाल आता है, कौन कहता है दूरियों से मिट जाता है प्यार, कभी कभी फासलों में भी कमाल होता है। और वह एक ऐसा गीत जिसमें सुरों की मिठास के साथ प्रेम की एक नर्म सी दुनिया बसती है। सुनिए और महसूस कीजिए उस पुराने सिनेमाई रोमांस को जिसका जादू आज भी कम नहीं हुआ। लव मैरिज फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

दोस्तों, हर बात को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी की आंखों में देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। कभी मुस्कान बता देती है कि दिल में कोई खास जगह बना चुका है, और कभी एक नजर इतनी गहरी होती है कि याद बरसों तक चलती है। मोहब्बत का यही तो जादू है जो साधारण से पलों को भी असाधारण बना देता है। जो रिश्ते दिल में बसते हैं उनमें दिखावे से ज्यादा अहमियत सच्चाई की होती है। आइए अब सुनते हैं ऐसा युगल गीत जो अपने सहज रोमांस और मधुर धुन के कारण आज भी दिलों में है।

देखते ही देखते ये संगीतमय रात बहुत खूबसूरती के साथ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आज हमने उन गीतों को याद किया जिसमें दो आवाजें थीं, लेकिन एहसास एक था। ऐसे गीत जो हमें बताते हैं कि प्रेम केवल कहने की चीज नहीं बल्कि हर दिन निभाने का नाम है। रात ढले तो यादों का कारवां निकले, दिल से दिल तक प्यार का रास्ता निकले। गीत खत्म हो, धुनें खामोश हो जाएं, मगर दिल में मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे।

और अब इस गीत के साथ ही अर्चना गोयल आपसे विदा चाहती है कार्यक्रम हमराही से। 4:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अब वक्त हुआ है समाचारों का, ये सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता

0: करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
3: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side, or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
2: Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes, and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आप सभी को सुबह की पावन बेला में बहुत बहुत नमस्कार। एक नई सुबह, एक नया दिन, नई उम्मीदें और जीवन को एक बार फिर से खूबसूरती से जीने का एक नया अवसर लेकर हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आज की इस सुबह हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे माँ दुर्गा के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पण करके। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से करते हैं।

आज नवरात्रि का पावन अवसर है। चारों ओर भक्ति का वातावरण है। कहीं माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं मंदिरों में आरती हो रही है, कहीं घर के आंगन में दीपक जल रहा है, तो कहीं कोई भक्त आंखें बंद करके बस इतना कह रहा है, हे माँ मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते भी हैं जब भी मन के आंगन में अंधेरा छा जाता है, माँ का नाम लेते ही विश्वास लौट आता है। राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ का आशीष हो तो हौसला बढ़ जाता है।

माँ दुर्गा ये नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। एक और माँ का ममतामयी स्वरूप जो अपने बच्चों को स्नेह से संभालता है और दूसरी ओर उसका दुर्गा स्वरूप जो अन्याय और बुराई के सामने अडिग होकर खड़ा रहता है। माँ हमें सिखाती है प्रेम करना भी शक्ति है और गलत के विरुद्ध आवाज उठाना भी शक्ति है। दूसरों के आंसू पोंछना भी पूजा है और अपने भीतर के डर को हराना भी साधना है।

दोस्तों, नवरात्रि में माँ के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप हमें जीवन का एक सुंदर संदेश देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माँ की भक्ति केवल सर झुकाने से उनके में नहीं बल्कि उनके गुणों को जीवन में अपनाने से है। दीपक जलाना ही आराधना नहीं, किसी के अंधेरे में उजाला बन जाना ही सच्ची साधना है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और अरुणिमा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:34 और ठीक 32 सेकेंड।

दोस्तों, पूजा में हम माँ को फूल अर्पित करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारे स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है? किसी बुजुर्ग को हमारी 2 मिनट की बातचीत चाहिए, किसी बच्चे को हमारा प्रोत्साहन चाहिए, किसी मित्र को हमारी बात सुनने वाला भरोसेमंद साथी चाहिए, किसी परेशान को सिर्फ इतना चाहिए कि घबराइए मत, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करता हूं। यही है असली पूजा।

क्यों ना आज एक छोटा सा संकल्प लें, हम किसी की आलोचना करने से पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रियजनों को केवल उनकी कमियां नहीं बताएंगे, बल्कि उनकी अच्छाइयों की सराहना भी करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने प्रति भी थोड़े दयालु बनना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर गलती के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना है।

आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ पल अपने मन के नाम करते हैं। यदि आप इस समय किसी शांत स्थान पर बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए और सहज भाव से मन ही मन माँ का स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर विश्वास का दीपक जल रहा है। ये दीपक आपको याद दिलाता है कि आप हर परिस्थिति

को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। और अब समय है आज की इस सुंदर और भक्तिमय सुबह को विदा कहने का। आज अरुणिमा में हमने माँ की महिमा को याद किया, उनके स्वरूपों से मिलने वाली प्रेरणा पर बात की और समझने की कोशिश की कि सुबह की सकारात्मक सोच किस प्रकार हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। माँ का नाम हो होठों पर, मन में नया उजाला, हर मुश्किल से लड़ने का हो अपने भीतर विश्वास, हर सुबह एक नई उम्मीद, हर दिन एक नई उड़ान, माँ की कृपा से रोशन रहे जीवन का हर आयाम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में शामिल होने वाले सभी गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद कार्यक्रम में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से

0: समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय अब ये तय करेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग अलग की जा सकती है या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। विस्फोट का सटीक स्थान नांगी टकरी क्षेत्र में सतवाल नाकी है, जहां से सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कर रहा है। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियंस और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. Uttar Pradesh government has provided 493 crore rupees in financial assistance to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstones and cyclones. In the function organized in Gorakhpur, Chief Minister Yogi Adityanath said, within just 8 to 10 days, the double engine government has made arrangements to provide compensation to the food providers for damage to their crops, houses and livestock. The CM stated that the subsidy is being transferred directly to the bank accounts of over 9 lakh farmers in the state. The Election Commission of India has extended the deadline for filing claims and objections to Maharashtra's draft electoral rolls to 26th of this month. The draft electoral rolls are published on 31st August. According to the revised schedule, the disposal of claims and objections will be completed by 10th of November, while the final electoral rolls will be published as scheduled on 16th November. The Chief Electoral Officer has urged eligible citizens and new voters to use the extended period to enroll, correct existing entries or file objections wherever necessary. India and the European Commission have agreed to strengthen cooperation on carbon markets and the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, or CBAM. The understanding emerged during a meeting between Power Secretary Pankaj Agarwal and Gerasimos Thomas, Director General for Taxation and Customs Union in New Delhi yesterday. Top officials of India and Iran held talks yesterday and exchanged views on the latest regional and international developments and issues of mutual interest. The Iranian embassy in New Delhi said in a social media post that Secretary of Iran's Supreme National Security Council, Mossad,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूर सुहानी। सुबह के 5:11 हो चुके हैं और आपके साथ कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुबह की प्यारी सी छटा में आप सभी को एक नई सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात से आज की शुरुआत करना चाहूंगी। हर सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लाती है, कभी उम्मीद, कभी हौसला, कभी मुस्कान लाती है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, नई सुबह जीवन को फिर से जीने का बहाना लाती है। तो आइए अपनी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं अच्छे विचारों, मधुर संगीत और सकारात्मक भावनाओं के साथ, भूर सुहानी कार्यक्रम के साथ।

दोस्तों, आपने कभी सुबह के शांत वातावरण को ध्यान से महसूस किया है? जब आसमान धीरे धीरे अपना रंग बदलता है, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और पक्षियों की आवाजें वातावरण में संगीत घोल देती हैं, तब लगता है प्रकृति हमें कोई सुंदर संदेश दे रही हो। प्रकृति कहती है, ठहरिए, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने आसपास बिखरी सुंदरता को देखिए।

साथियों, हमारा विचार है कि अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्रिया से कीजिए। जरा सोचिए, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे पास एक नया दिन होता है, सांसों का साथ होता है, कुछ नया सीखने का अवसर होता है और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की संभावना होती है। फिर क्यों ना हम सबसे पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे पास ही है। साथ ही अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे।

चनैया ताय उठाए लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चनैया जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूत सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:27 और 59 सेकेंड। दोस्तों, सुबह का समय अपने भीतर झांकने का भी समय है। जब संसार धीरे धीरे जाग रहा होता है, तब कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताना मन को अद्भुत शांति देता है। प्रार्थना वो भावना है जिसमें हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेते हैं। आइए कुछ पल मन ही मन ईश्वर को याद करें।